की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी च नतमस्तक हो रही गुरु की साजी और नवाजी होई गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो कि नेता प्रति गुरु चरणा च जुड़ के श्री गुरु पंथ प्रकाश दी चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा और भावना दे सहित सरवण कर रहे। भाई रतन सिंह जी पंगू अपने पिता ते अपने दादा जी दी साखी दस रहे इतिहास दस रहे कि जदों मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के लै गए ते मस्से दा टब्बर सूबे लाहौर कोल जाके रोया कुरलाया। सूबे लाहौर जकरिया खान ने जिन्ने उहदे टोट सी मुखबर सी हर भगत निरंजनिया रामा रंधावा करमा छीना ये सारे सद ले और सद के कहिंदा तुसी कहिंदे सी सिंघ मुका दित्ते आ इह तां फिर मेरे बंदिआं दे सिर वढ़ के लिजा रहे ने कौण ने कित्थे रहिंदे आ दसो पिंड किहड़ा। हर भगत निरंजनिए ने दस्सिआ जी इह पिंड तुहाडे पीर सैयद दे अधीन आउंदा उहनूं सद्दो उस पिंड दा नाम है मीरां कोट ते उस पिंड दा रहिण वाला मताब सिंघ है जिन्हें मस्से रंगड़ दा सिर वड्डिआ। इन्हें उसे वेले फौज चढ़ा के भेजी लाहौर तो बड़ी वड्डी फौज रंगड़ा दे नाल चढ़ के आई। जदों मीरां कोट पहुंचे तो मीरां कोट दा चौधरी सी पंच सी नत्था खैरा उहनूं सद के कहिंदा दस मताब सिंह कित्थे आ हाजर कर। नत्थे खैरे ने कहा जी उह तां बड़े सालां तों पिंड नहीं वड़िआ नहीं पता कित्थे होवेगा। कहिंदा मैं सुनिआ उहदा पुत्तर है इत्थे उहनूं लिआ के हाजर कर उहदा कतल करना ते बदला लैणा। नत्थे खैरे ने सोचिआ कि इक बालक क्योंकि मताब सिंह मैनू सौंप के गया ते मैं उहदे नाल वचन कीता कि मैं तेरे पुत दी राखी करांगा ते मैं इन्हां तुरकां दे हवाले करके उह जे बच्चा मरवा दित्ता ते मैनू पंचां च बहिण नूं थां नहीं प्राप्त होणी मेरे मत्थे ते कलंक लगेगा। इहने अपने घर दी पिछली कंध तों टप के अपने नाल इहदा इक पुत्तर इक इहदा भाणजा और इक इहदे घर दा कामा सी उहनां नूं नाल लै के राए सिंह नूं मोढ़िआं ते बिठा के इह माड़ी कंबोकी दे रस्ते नूं चल पिआ। निरंजनिए हर भगत नूं पता लगा इहदे आखिआ जी तुसीं नत्थे नूं इत्थे उड़ीकदे हो तां कंध टप के पिछले पासों निकल गया। इहनां हमला कीता ते रस्ते च नत्थे खैरे नूं रोक लिआ। नत्थे ने अपने पुत्तर नूं कहा पोते मताब सिंह दे पुत्तर राय सिंह नूं तू चुक के इत्थों लै के किते निकल जाए दी जान बचाउणी जरूरी है। उहने आख्या पिता जी हुण भज के जान नहीं बचणी हुण तां इत्थे लड़ना पैणा। जंग शुरू होया। नत्थे खैरे दे हथ विच तीर कमान सी अपनी कमान दे तीर चाढ़ चाढ़ के बहुत वैरियां नूं बिन्निआ और इहदा जिहड़ा सीरी सी उहदे हथ विच चंगी मोटी डांग सी उस डांग नाल मस्से रंगड़ दा इक भरा सी उहदे सिर च डांग मारी उहनूं भी कतल करके सुट दित्ता। तो गह गच जंग हो रिहा। रंगड़ भज के वापस गए मुगलां नूं कहिंदे साडी मदद करो। उह कहिंदे आ वी मस्सा तां तुहाडा मारिआ रिश्तेदार तुहाडा मरिआ जाओ जा के बदला लो असीं क्यों तुहाडे नाल जाइए। ਉਹ ਮੁਗਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਤੋ ਉਧਰ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜ। ਤੋ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਪਰ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨੇ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ
ਤੋਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਆਗ।

0: जान बख्शी जाएगी मैं तुहानू छुड़ा देंगा।
1: सिंह कही हम कब जान बचावे।
0: बाबा बूटा सिंह गरजा सिंह कहंदे हो मलेच्छा जे जान बचाउणी हुंदी ते चिट्ठी लिख के भेज के सद्दे तुहानू।

तीर्थ नहावा जित सुभावा बिन पाणे के नाही करी जेती सरठ पाई वेखा बिन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी।

तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाऊ असंख पूजा असंख तपताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

प्रसाद अनाहत जुग जुग इको वेस आसन लोए लोए भंडार जुग छपाया सो एकावार कर कर वेख्या सजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश स आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बौ लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीस एत राहे पद पवड़िया चढ़िया होए एकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर च पैन है जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिसुज धरती थाप रखी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिन्हां प्यारिया सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़िया ते चढ़े तन आरिया नाल चराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता जंडा नाल बन के साड़े गए देगा विच उबाले गए पुठियां खलां लोहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाही तिन्हां समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम सुनना करना अपने दो मिनट वास्ते नाभ चक्कर ते सुन सकते हो, हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है, कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है, किसी भी प्राणी ने कृपा करके मस्तक ते जोर दे के ध्यान नहीं लैके जाना जीओ। जिन्हों गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ ओ शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ।

के नाम तो भी होने जो कुछ भी है। गुरु नानक साहब यानी कि गुरु अर्जन देव साहब कहते नाम तो भी होना जो कुछ भी है सब कुछ धूड़ हो जाना मिट्टी च रल जाना। नाम बहुने नानका होत जात सब तूर, सारा कुछ मिट्टी च खेच रल जाना है ही सब कुछ मिट्टी। एक अकाल पुरख का नाम ही त्रई काल सत है, ओदे तो बिना बाकी सब कुछ खाक हो जाण वाला धूड़ विच रल जाण वाला सदा नाल निभण वाला तिना कालां विच जो सत है

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी अपार कृपा मेहरामत सच्चे पातशाह जी ने कीती है। अमृत वेले दे दीवाना विच हाजरियां भर के प्राप्त होए मनुखा जन्म नूं सवार रहे हो, लाहा खट रहे हो। धन्नवादी हां ती सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी मुख ग्रंथी गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पातशाही नौवीं पटियाला जो पिछले लगभग एक महीने तो आप संगतां नूं सवेर दे वेले पावन लड़ीवार गुरबाणी दी विचार रोजाना शाम 6:40 तो 7:40 तक प्राचीन पंथ प्रकाश पावन गुर इतिहास दी कथा विचार राही शरशार करदे हन। तह दिल तो तिन्हां दा धन्नवाद है। केवल 2-3 दिन ही बाकी हन, वध चढ़ के लाहे प्राप्त करिए। सुभाग दे नाल ये बेशकीमती समा प्राप्त होया है, वध तो वध लाहा खटना साडा हुण फर्ज बनदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन सत्कार योग ज्ञानी जी नूं चढ़दियां कला बख्शिश करन, इसे ही तरह देश कौम पंथ दी सेवा विच रहिंदी जिंदगी तक गरीब नवाज तरस करके लाई रखन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब भाई हरपाल सिंह जी आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। होईयां सरबत भुल्लां दी दया दृष्टि करके खिमा बख्शनी, जोड़ियां विच बिठाई रखना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: होया एहसास ओनू सिख रूपे दी शरदा अतुट दा होया एहसास ओनू सिख रूपे दी शरदा अतुट दा जित दा है सच कहा दशमेश ने कूड़ है निखुट दा जित दा है सच कहा दशमेश ने कूड़ है निखुट दा
1: गुरु जी दे बचना चो सानू मिलदा सच।

चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाउ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जाम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरित सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तव भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हाउ पाई रहाव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल जिसनो तू जान आए हे सोई जन जाने हर

तबेओ बात बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोह रक्षा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियहो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा।

सर्ब ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपीद, कहे हम एक ना जानेओ। श्री असपान।

गहयो तोहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस, गोविंद दास तोहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया, सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आईया, शब्दो ता गावहु हरि केरा, मन जिने वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सत गुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार उह करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गला समरथ सुवामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही, घर तेरा घरता तेरा, सब किछ है जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही, घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो, जिस दिया एह वडे आईया, कहे नानक सुनहु संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल, कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे, अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वेसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा, थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंज।